तंत्री प्रकर्षम दुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्त चरितं तवनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचाम रम्यम् शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावडी च मकरन्दरसानुविरिध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त